गुरु जी की बंदिश है गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी की, कह रहे कि धन जोवन नदी नाव संजोग, जैसे नदी के साथ नाव का संपर्क है, धन जोवन नदी नाव संजोग कहत मुनि ज्ञानी, जग में सब करत अपनी अपनी कर...